0: चली कर तुर सूर दो खुले वो मेरे चलो जैसे पग चला
1: गया
0: मेरे देर मरदार अली वो राजो अय्या।